आदाब। नमस्कार, आपकी तबस्सुम फिर आ गई। फ्लैशबैक का नया एपिसोड लेके ढेर सारी नई नई बातों के साथ, मजेदार बातों के साथ, चटपटी बातों के साथ, और वो भी किशोर कुमार की।